You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: चांदनी रातें।
1: Yeah, wanna feel that?

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विला जियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विला जियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विला जियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।
3: Hi, this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
1: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hello listeners, my name is Rajpal Yadav, and you are listening to Qatar's number one Hindi radio station, Radio Olive 10.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
3: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
2: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM. ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
3: I Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
4: 106.3 Radio Olive, your happiness frequency.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: नया लुक, नया फील. कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश. अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग. विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस.
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज.
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो. कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर. टीएनसी अप्लाई. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: रेडियो

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
1: कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Hi, Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Arshad Varsi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
9: 106.3 Radio Olive. You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

Good morning. You are listening Radio All Over 106.3 FM. This is me Muskan with you. Our show का नाम Yes Life Must है. और weekend मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है. Friday को खत्म हुए बस थोड़ी ही देर हुई है. Saturday आ गया है. और सच बता रही हूँ इस adult life का सबसे बड़ा emotional scam ही यही है कि दो दिन wait करो और फिर दो दिन में you know ना sleep complete होती है, ना shopping होती है, ना घर का काम होता है और ना ही mentally हम recover कर पाते. मतलब Friday Saturday usually सबका ऑफ होता है कतर में. सैटरडे कोई हाफ डे वर्किंग कर रहा होता है, कोई यू नो थोड़ी बहुत मीटिंग्स लाइन अप करके बाकी सारी चीज़ों को बस सॉर्ट कर देता है. कभी कभी सिर्फ यू नो ऑफिस जाके कुछ पेपर वर्क मेल्स कंप्लीट करने होते हैं. बट सैटरडे की रात को आपको रियलाइज होता है कि यार प्लीज़ रीस्टार्ट सिस्टम दबा दो. मेरा वीकेंड भी ऑनेस्टली काफ़ी रियलिस्टिक था. मैंने नेटफ्लिक्स देखा, शॉपिंग की और वो भी एकदम यू नो क्लासिक मिस्टेक थी क्योंकि सिर्फ एक चीज़ लाने जाने के लिए आपको पूरा मॉल जाना पड़ता है और कतर का मॉल कल्चर जो है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि आप बस कॉफ़ी लेने जाओ और वापस आओगे परफ्यूम्स, कैंडल्स और शूज़ पता नहीं क्या क्या लेके. मतलब कभी कभी लगता है कि सिंपल वीकेंड ही बेस्ट होता है. यहाँ पे कोई बड़े प्लान्स ना हो, कोई प्रेशर ना हो, बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, अच्छा खाना खाओ और डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड ऑन कर दो. बट कोई नहीं, मतलब कल मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है, खर्चा कर लिया है. सो उस खर्चे के बारे में आपको बताऊंगी कि भाई मेरा वीकेंड कैसा रहा, क्या क्या मैंने एक्सप्लोर किया, नेटफ्लिक्स पर क्या देखा. पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. आई विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: This is Deepika Padukone.
5: Deepika Padukone.
4: Radio Olive 106.3.
6: I'm in number one. Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: सो दोहा में जीसीसी गेम्स ऑफिशियली गोल्डन मोड में चल रहे हैं भाई। टीम कतर ने एथलेटिक्स में कंपटीशन के ओपनिंग डे पर ही 14 मेडल्स जीत लिए, 5 गोल्ड 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। और ऑनेस्टली मतलब बिगेस्ट इमोशनल मोमेंट है ये। यहाँ पर ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन जो है मुताज, उन्होंने इंजरी के बाद वापस से रिटर्न करके गोल्ड जीता है, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने गोल्ड शेयर भी किया ओमानी एथलीट के साथ, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में इटालियन एथलीट के साथ शेयर्ड गोल्ड हुआ था। और ऑनेस्टली स्पोर्ट्समैनशिप का ये जो मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है आज के यू नो हाइपर कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। शेयरिंग विक्ट्री बहुत ही रेयर होती है, और जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे लगता है इट्स सो गुड यार। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। बाय द वे आज है सैटरडे, और सैटरडे होता है लाइफ में थोड़ा सा आराम करने के लिए, थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, थोड़ा सा चीज़ों को सेटल करने के लिए। वी विल डू दैट, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

सो कतर इंडोर स्पोर्ट्स में भी फुल डोमिनेशन मोड में है भाई. जीसीसी गेम्स में कतर ने बॉलिंग ट्रिपल्स और 10 बॉल डबल्स बिलियर्ड्स में गोल्ड मेडल्स जीत लिया है. बॉलिंग टीम्स ने 6 गेम्स में मैसिव स्कोर क्रिएट किया है और बिलियर्ड्स में फाइनल में कुवैत को 7-1 से डिफीट किया है. और बिलियर्ड्स टीवी पे इजी लगता है लेकिन एक्चुअली इट्स प्योर जियोमेट्री प्लस फोकस यार. मतलब मैं कोई भी गेम की अगर बात करूँ तो फोकस तो चाहिए ही पर बहुत सारी मेहनत और प्रैक्टिस भी चाहिए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. मतलब इन गेम्स में एक रॉन्ग एंगल और पूरा गेम खत्म. अब बात ये भी है कि कतर इंडोर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहा है. बिलियर्ड्स, बॉलिंग, स्नूकर, पैडल सब रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहे हैं. और इंडोर स्पोर्ट्स में गल्फ रीजन में नेचुरली बहुत पॉपुलर भी है क्योंकि एडवांटेज है एसी. सो बेसिकली यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाले एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग. मैंने अपने इवन आसपास भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ 8 साल, 10 साल, 12 साल के हैं, वो दूर दूर जाते हैं लोसेल की अकेडमी में फुटबॉल खेलने के लिए. और इवन बहुत आसपास जो भी उनके फैसिलिटीज़ होती हैं वो बच्चों को ज़रूर शाम को कुछ ना कुछ सीखने के लिए भेजते हैं. एंड आई रियली लाइक दैट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. आप बताइए कि आप अपने बच्चों को कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव रखते हैं. 3311106 इज़ माई नंबर. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: Radio Olive.
1: Radio Olive.
0: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
1: Shahrukh Khan. I'm in number one.
2: Radio Olive. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
3: मसान से लेके उरी तक हर किरदार बेमिसाल।
4: ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
3: विक्की कौशल का स्वैग आज भी है कमाल।
5: आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप।
6: हुसन तेरा तौबा तौबा।
3: हैप्पी बर्थडे टू द वर्सेटाइल एक्टर विक्की कौशल।

0: दिस इज द टाइम जहाँ पर मैं बात करती हूँ बुक्स की. वैसे कतर में इंटरनेशनल बुक फेयर लगा हुआ है 2026 DECC में, बट उसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे. बात करते हैं अभी कि आज कौन सी किताब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो किताब का नाम है भाई द सीक्रेट हिस्ट्री. सो स्टोरी जो है वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो धीरे धीरे यू नो ऑब्सेशन और मैनिपुलेशन के डेंजरस वर्ल्ड में एंटर करता है. बुक जो है वो आपको सस्पेंस दिखाती है, जहाँ पर व्हाट डिड इट हैपन होता है, और मतलब आप ये फील करोगे कि यार ये हुआ क्या. और ऑनेस्टली इसी साइकोलॉजी स्टोरी टेलिंग की वजह से ये जो बुक है ये कल्ट क्लासिक बनी थी. और सोशल मीडिया पे भी अब यू नो ऐसी कुछ एस्थेटिक किताबें हैं जिनको पढ़ के ऐसा लगता है कि यार मतलब लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुक रिव्यूज़ करने लगे हैं सोशल मीडिया पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आज के टाइम पे वापस से वो कल्चर वापस आ रहा है, जब लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे किताबें पढ़ना सीखें, वेस्ट ना करें बिल्कुल भी टाइम, सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही ना देखें. और इसी के साथ इसी वजह से पेरेंट्स भी जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं, सो दैट बच्चे वो देखें और सीखें. बाय द वे, आप कैसे अपने बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाते हैं? 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर. यू कैन व्हाट्सएप मी और आप ऑडियो भी भेज सकते हो. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई

तो कल का मैच तो था लखनऊ और चेन्नई के बीच में। स्कोर की अगर बात करूं तो लखनऊ ने 16 ओवर 4 बॉल में अपना जो टारगेट स्कोर था वो ले लिया। इट वाज 188 तीन विकेट के नुकसान पे, मतलब बढ़िया खेला। अब यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। आज के अगर मैं मैच की बात करूं तो इट्स 60th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट जो कि होने वाला है कोलकाता और गुजरात के बीच में। अब जो बाहर हो चुकी टीम्स हैं उनका कैलकुलेशन चल रहा है कि भाई प्ले ऑफ में कैसे क्या होने वाला है। सो 2026 के इस टूर्नामेंट में जहां पर मैचेस के बाद प्ले ऑफ का कैलकुलेशन बदल जाता है, रेस से बाहर हो चुकी टीम्स अब बेखौफ अंदाज से खेल रही हैं और इसका जो शिकार है वो टीम्स हो रही हैं जो लास्ट चार पहुंचने वाली हैं। वो मतलब पूरी दम लगा रहे हैं कि हम बस कैसे भी इन चार टीम्स में पहुंच जाए। सो दो दिन पहले मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को हरा दिया था बेसिकली थर्सडे को, और कल इस सीजन की सबसे कमजोर टीम साबित हुई लखनऊ ने चेन्नई को मात दे दी। मतलब पिछले चार में से तीन सीजन में प्लेऑफ वही टीम खेल पाई है जिन्होंने लीग राउंड में 16 या फिर इससे ज्यादा पॉइंट्स बनाए हैं। अब पिछली हार के बाद पंजाब और चेन्नई को अगर 16 पॉइंट के बैरियर को छूना है तो आखिरी दोनों मैच तो जीतने ही होंगे, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बाय द वे, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? 3311106 इज माई व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से बताओ। और बात करेंगे कि चेन्नई तीन मैच के बाद हारी और 6th नंबर पर पहुंच गई है। और आज के मैच की भी बात करूंगी कि भाई जो ये गुजरात और कोलकाता का मैच है इसका क्या सीन है। आज सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
4: नीना गुप्ता,
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
0: ओलिव सुनो रेडियो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और आज कोलकाता का मैच होने वाला है गुजरात के साथ. सो ये कोलकाता में ही होने वाला है स्टेडियम में. आज शाम को इंडियन टाइम जो है वो थोड़ा सा लेट है, बट कातर टाइम इज 5 o'clock. सो यहाँ पर सारे अपडेट्स देने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो ऑल. और इसी के साथ अब बात करते हैं कि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में जीतना होगा. और शुभमन गिल की कैप्टनसी वाली गुजरात जो टीम है उसकी नजरें जीत के साथ पॉइंट टेबल के टॉप 2 में जगह पक्की करने पर है. अब दोनों टीम्स के बीच में अब तक 5 मैच हुए हैं. और अगर मैं बात करूं कोलकाता ने 1 और गुजरात ने 4 मैच जीते. पिछले सीजन में दोनों के बीच में 1 मैच हुआ था जिसे गुजरात ने जीता था. और इस सीजन में दोनों टीम्स दूसरी बार आमने सामने आ रही हैं. और आई वॉज थिंकिंग कि भाई अब क्या होने वाला है. मैं अगर अपनी उससे बात करूं तो अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में कोलकाता का सीजन अब तक काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है. पिछले साल टीम उनके कैप्टनसी में 8वें नंबर पर थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा कैप्टन बनाए जाने का सवाल मतलब उठ रहे थे कि यार इनको कैप्टन बनाएं या फिर नहीं बनाएं. और इस सीजन में कोलकाता को पहली जीत के लिए 7वें मैच का इंतजार करना पड़ा. मतलब 7 मैच खेलने के बाद 1 जीता है उन्होंने. अब आज शाम को पता चलेगा कि आज क्या होगा. पर आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पूरे टूर्नामेंट में और कौन है आपकी फेवरेट टीम. बाय द वे, जब भी मैं ऐसा सवाल पूछती हूँ मुझे लिखा आता है कि भाई बैंगलोर जो है लोगों की फेवरेट टीम है. यार मतलब उसका क्या रीजन है? विराट कोहली इज द रीजन या फिर कोई और भी रीजन है? 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: तो कल था फ्राइडे और एवरीबडी वॉज एंजॉइंग समवेयर, मतलब कोई किसी इवेंट में था, कोई कहीं शॉपिंग कर रहा था, तो कहीं कोई बुक फेयर इंजॉय कर रहा था. बाय द वे इस वीकेंड पे, मतलब अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो हाउ वॉज इट, मतलब प्रोडक्टिव था या बस सर्वाइव कर रहे थे आप? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. भाई कतर में एवरी वीकेंड हैज़ समथिंग, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो. मैंने अगर बात करूँ अपनी, तो नेटफ्लिक्स देखा, थोड़ी शॉपिंग की और एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कि आजकल मॉल्स ना सिर्फ शॉपिंग प्लेस नहीं है, मतलब पूरी थेरेपी बन गए हैं यार, जहाँ पर आपको कॉफ़ी मिल जाती है, विंडो शॉपिंग हो जाती है, रैंडम वॉकिंग हो जाती है. और कतर मॉल्स के एस्थेटिक भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हैं. लेकिन बिगेस्ट लाइक क्या होता है, बस देखने जा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है यार. आप स्किन केयर देखते हो, परफ्यूम्स देखते हो, मतलब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ कतर में, फूड कोर्ट दिख जाता है आपको, एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स, मतलब लेकर ही आओगे आप. कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी कर्तव्य. बाय द वे वो दो दिन पहले ही रिलीज हुई थी, मतलब ऐसा एड आ रहा था उसका 14th को और वो कल सुबह सुबह शायद रिलीज हुई थी 15th को. एंड मुझे लगा कि भाई अब आ गया है, कुछ तो देखना तो बनता है. तो आई स्टार्टेड. सैफ अली खान की मूवी है, 1 घंटा 50 मिनट करीब की मूवी है. वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: मसान से लेके उरी तक हर किरदार बेमिसाल.
2: ये दुख का खत्म नहीं होता बे.
1: विकी कौशल का स्वैग आज भी है कमाल.
3: आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप.
4: हुसन तेरा तौबा तौबा.
1: हैप्पी बर्थडे टू द वर्सेटाइल एक्टर विकी कौशल.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर TNC अप्लाई
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई फ्राइडे माई वीकेंड एंड कल मैंने नेटफ्लिक्स पे थोड़ा सा टाइम इन्जॉय किया एंड इट वॉज लाइक कि यार नई मूवी आई है तो देखना तो बनता है. सो मैंने देखी कर्तव्य. ओल्ड स्कूल ड्रामा का अपना एक अलग चार्म होता है और डार्क ओवर स्टाइल्ड टाइप का वो जो मूवीज़ होती है ना वो मुझे अच्छी लगती है. लेकिन कर्तव्य टाइप स्टोरीज़ में इमोशंस बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं. फैमिली ड्रामा, ड्यूटी और रिलेशनशिप्स, बस इंसान यहीं पर फंसा हुआ है. सबसे ज़्यादा होता है ड्यूटी और रिलेशनशिप्स और फैमिली ड्रामा. और ओल्ड सिनेमा की जो पेस है वो भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, स्लो लेकिन इमोशनली लेयर्ड. आज की फास्ट एंडिंग जनरेशन के लिए शायद मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेकिन उसमें भी एक वॉर्म्थ होती है. पुरानी फिल्म लाउड है, थोड़ी सी लास्टिंग है और वीकेंड पे कभी कभी कंफर्ट सिनेमा जनरली मुझे तो पसंद है देखना. सो आप मुझे बताओ कि आपने इस वीकेंड पे क्या देखा एंड अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि कर्तव्य देखना चाहिए या फिर नहीं, देन यू कैन वॉच यार, मतलब आई रियली लाइक दैट. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना. फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना.

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: I was wondering about Singapore culture or discipline. मतलब you are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और यहाँ पर हम कतर में सिंगापुर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं कल एक ऐसे मीम पढ़ रही थी, एक छोटी छोटी चीजें जो होती है ना कि कौन सी कंट्री में कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. तो एक रूल सामने आया लिटरली लाइफ स्टाइल, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंटरनेट पर रिसेंटली वायरल हुआ कि वहाँ पब्लिक स्पेसेस पर जो नेचुरल रिलेटेड रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे लगा कि कोई कैसे मतलब इतना यू नो एडजस्ट कर सकता है. सो जो फॉलन फ्रूट्स होते हैं, जैसे मान लो कि आम के पेड़ के नीचे एक आम गिरा हुआ है, भाई इशू क्रिएट हो जाता है अगर आपने वो आम उठा लिया तो. सिंगापुर डिसिप्लिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली फेमस है, क्लीनलीनेस, स्ट्रिक्ट फाइन्स और पब्लिक बिहेवियर रूल्स, एवरीथिंग हाईली ऑर्गेनाइज्ड. मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों पर फाइन देख सकते हो, रूल्स काफी सीरियस हैं और इसी डिसिप्लिन की वजह से सिंगापुर वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट कंट्री में भी आता है. सो मैं ये सोच रही थी कि लोग वहां पर रूल्स को, जब कहीं आउट ऑफ कंट्री से लोग जाते हैं, मान लो इंडियंस जा रहे हैं या दूसरी कंट्री से जा रहे हैं, सो उन लोगों को कितना टाइम लगता होगा ना यू नो कल्चर को और रूल्स को याद करने में. मतलब हर नई जगह पर डिसिप्लिन, हैबिट और नई चीजें आप सीखते हो. जैसे मैं कतर में आई थी तो मैंने बहुत कुछ नया सीखा. यहां पर हर चीज इतनी खूबसूरत दिखती है, हर चीज इतनी साफ होती है, हर मॉल में इतना डिसिप्लिन होता है कि आप कुछ भी कहीं पर भी जाते हो तो लाइंस लगी होती हैं प्रॉपर. सो आप हर जगह पर कुछ नया सीखते हो. बाय द वे, आपने अभी तक कौन कौन सी जगह पर ट्रैवल किया और क्या बेस्ट सीखा है? 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: मसान से लेके उरी तक हर किरदार बेमिसाल.
2: ये दुख का खत्म नहीं होता बे.
1: विक्की कौशल का स्वैग आज भी है कमाल.
3: आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप.
4: हुसन तेरा तौबा तौबा.
1: हैप्पी बर्थडे टू द वर्सेटाइल एक्टर विक्की कौशल.

0: सो एवरी डे आई टॉक अबाउट वन बुक, और जैसे ही इंटरनेशनल बुक फेयर आता है मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें आप वहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो. आपको डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स दिखेंगे, अलग अलग कंट्री से आए हुए जो लोग होते हैं, अलग अलग बुक्स दिखेंगी. और DECC में करंटली चल रहा है दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर. अगर अभी तक आप नहीं गए हो देन टुडे इज़ द डे. सैटरडे है, आपके पास टाइम भी होगा. बुक्स हैं, स्टेशनरी है, बहुत इंटेलेक्चुअल वाइब होती है वहाँ पर. सो यू विल लव इट. बुक फेयर जो है वो 23 May तक चलने वाला है, और आज तो 16th ही है, सो आपके पास स्टिल टाइम है. और जो टाइमिंग है वो रात के 9 PM तक है. और बेस्ट पार्ट क्या है, सिर्फ बुक्स नहीं, आपको वहाँ पर वर्कशॉप्स, डिस्कशंस, कल्चरल एक्टिविटीज़, कैफेज, किड सेक्शन, सब कुछ दिख जाएगा. एंड डिजिटल एज में भी बुक फेयर्स का चार्म यार उतना ही ब्यूटिफुल लगता है, क्योंकि फिजिकल बुक्स का एक्सपीरियंस अलग होता है. स्मेल ऑफ बुक्स, रैंडम डिस्कवरीज, कवर आर्ट, मतलब कभी भी आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग दिख सकता है बुक फेयर्स में. सो आई विल से कि स्क्रोलिंग और ब्राउजिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो आई विल से कि गो एंड चेक आउट अगर अभी तक आप नहीं गए हो तो. मैं पिछले साल भी गई थी और आई एम श्योर आपने वो पिछले साल जो मैंने रील बनाई थी वो देखी होगी. पर इस साल मैं आपसे बस यही कहने वाली हूँ कि जाइए, चेक आउट कीजिए. सुंदर वही रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.

सो अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ऑनेस्टली ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर जैसा फील करवाती है। चाइना के एक यंग बॉय ने रूबिक्स जो क्यूब होते हैं ना, जो कलरफुल क्यूब्स होते हैं जिनको हम सॉल्व करते रहने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं तो कोशिश ही करती हूँ, कभी होता नहीं है, उसे 0.39 सेकंड्स में सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मैंने जब वीडियो देखा तो आई वाज लाइक शॉक्ड। जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ और वो ही वाज लाइक रेडी, वो पूरा क्यूब्स की तरफ देख रहा था बच्चा, और जैसे ही टाइमर रेडी हुआ विद इन वन सेकेंड, मतलब 0.39 सेकंड्स में सॉल्व करके ख़त्म, मतलब ब्लिंक करने से भी फास्टर, और इंटरनेट पूरा शॉक्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पीड जो क्यूबिंग होती है उसमें फुल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बन चुका है। वो प्लेयर्स जो हैं वो फिंगर मूवमेंट, मेमोरी, रिफ्लेक्शंस, एल्गोरिदम, इसके हिसाब से चलते हैं, सब ट्रेन करते हैं अपने अपने आप को। और ये जो रूबिक्स क्यूब होते हैं सिर्फ टॉय नहीं होता, ब्रेन ट्रेनिंग होती है, फोकस इम्प्रूव करता है, पैटर्न रिकोगनाइज को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन आई एम स्टिल लाइक प्रोसेसिंग कि 0.39 सेकेंड सुन के ना, या वो वीडियो देख के, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान था या प्रोसेसर। मैं तो इतने में मतलब क्यूब शायद उठा पाती और देख ही पाती कि ये चल क्या रहा है, चाहे मैंने कितनी भी प्रैक्टिस कर ली होती, मेरे तो मतलब बस से बाहर था। बाय द वे, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट एंड यू विल फील यार कि हुआ क्या। इतने में तो आप आँख झपका के बस, मतलब कैसे। बाय द वे आप वो वीडियो जरूर देखना। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। आज तो सैटरडे भी है, तो बस मैं यहाँ से फटाफट से आपसे बातें करने के बाद जाने वाली हूँ एक बढ़िया सी जगह पे लंच, और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ना इतना फास्टर इंटरनेट है, स्मार्टर फोन्स हैं, एंडलेस एंटरटेनमेंट है, सब है, लेकिन अटेंशन वो कम होता जा रहा है यार। कभी कभी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन की कमी हो जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बाय द वे, अभी आई विल से कि आप भी अपने सैटरडे को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा फ्राइडे और थर्सडे की इवनिंग बस बाहर घूमने में, यू नो, चीज़ें सेट करने में निकल गया है, तो अब बस ये जो बाकी का आधा दिन बचा है सैटरडे का, उसको आराम से रिलैक्स करो। और आई विल से कि मोमेंट कम मिलते हैं हमें, स्क्रीन में ज़्यादा हम रहते हैं, सो आज थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा ऑफलाइन हो जाओ, क्योंकि लाइफ नोटिफिकेशंस के बाहर भी चल रही होती है, बस यू हैव टू चेक आउट। आई विल से कि अभी के लिए मैं जा रही हूँ, सो अपना ध्यान रखिए, कल सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर मिल जाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: radio station, Radio Olive 106.3 FM. नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
2: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप back to back

0: रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: मसान से लेके उरी तक हर किरदार बेमिसाल।
2: ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
1: विक्की कौशल का स्वैग आज भी है कमाल।
3: आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप।
4: हुसन तेरा तौबा तौबा।
1: हैप्पी बर्थडे टू द वर्सेटाइल एक्टर विक्की कौशल।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Ek ghanta. Non-stop back to back gunny. Back gunny.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha. Tanisha. Kuratul and Baloch aur Shuja Haider ki awaaz mein. What a beautiful track. Aisa laga ki ek nahi do teen gaane ek saath sun liye par maza aa gaya.
1: Bilkul bilkul bilkul maza aa gaya. Aur yahan pe Tanisha madam aa chuki hai Olive Recharge mein.
0: Yes, aur aaj main Sudev ko apne saath lekar aayi hu.
1: Bataiye aisa aisa kya hua ki aap mujhe bhi lekar aaye hain. Khushi ka kya manzar aaya?
0: ऐसे ही बहुत टाइम हो गया था ना.
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा चलो आज मौका दे देते हैं लड़की को. बहुत टाइम से बोल रहा था कि यार मैं मिस कर रहा हूँ यार, तो मैंने कहा चल तू आज कर ले मेरे साथ शो.
1: सपनी सुहानी
0: आते ही लड़ाइयाँ नहीं शुरू करनी हमने.
1: मैंने नहीं करनी है, आप कर रहे हो.
0: तू मुझे मौके देता है.
1: अच्छा
0: हाँ,
1: आप मौके बनाते हो और उसके बाद मुझे बोलते हो कि मैं मौके दे रहा हूँ. बेटा बहुत चाहते रहो आप, मैं समझ गया आपका. देखो जो भी लोग हमें
0: हाउ ही इज टर्निंग द टेबल्स आई टेल यू.
1: देखो इन्हें लगता है कि जब बात सॉलिड वाली आ रही है मेरे मुंह से तो ये इंग्लिश में बोल देंगी तो लोग सोचेंगे कि ये सही बोल रही है.
0: मैंने तुझे दुष्ट,
1: मगर बात तो बदल नहीं रही ना. तब भी
0: फैक्ट है वो.
1: इनका इनका तरीका देखिए आप, स्ट्रेटजी देखिए. ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जाने पता है मेरे मुंह से यही निकलना है.
0: हाय कितनी मतलब मास्टरमाइंड ही होगी मैं एकदम. है
1: भाई
0: मुझे तो पता ही नहीं था.
1: अरे भाई ये भाई बहुत शातिर शातिर वुमन है ये.
0: बाय द वे गुड आफ्टरनून एवरीवन. क्या हाल चाल है, हाउ हैज द वीकेंड बीन, और सैटरडे का क्या मूड है, ये सब कुछ जानने का है मुझे. क्या किया आपने वीकेंड पे, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली अपने लिए वक्त निकाला या नहीं.
1: वही बहुत सही बात पूछी है आपने, क्योंकि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम के कारण हमें इस भागदौड़ के कारण जो है वक्त नहीं मिल पाता है.
0: True.
1: तो कभी ना कभी अपने लिए वक्त निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिचार्ज करने के लिए, रीएनर्जाइज करने के लिए, रिजुविनेट करने
0: के लिए. क्या बात,
1: डिक्शनरी खा के आया हूं उस बार को. बढ़िया. पॉइंट यही है कि कभी कभी ये टाइम हमें निकालना पड़ता है.
0: जी,
1: तो
0: बहुत
1: मैडम, आपने क्या किया अपने वीकेंड में
0: बताऊंगी. पहले शुरुआत होती है यू नो लिसनर्स से.
1: क्या बात,
0: जो सुन रहे हैं मुझे इस वक्त फटाफट से मैसेज कर दो, फिर इंतजार किस बात का है. 3311 1063 पर, और यू कैन कॉल ऑल्सो बाय द वे 4444 1063 पर. और फिलहाल आ रहा है अनन्या वाडकर की आवाज में वादा है फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो.
1: यार जो वादा आपने किया था कि मुझे आप 500 रियल दोगे वो कब.
0: Let's listen to this beautiful track on Radio Olive. Jivindal.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम ड्रीम बिगर
4: आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक

0: हफ्ते तक तनिषा
1: पैपॉन की आवाज में मेट्रो इन दिनों से होते तक ब्यूटीफुल ट्रैक एंड बढ़िया मूवी है ना सुदेव.
2: बहुत बढ़िया मूवी मैंने देखा था, मूवी थिएटर में जाके मैंने देखा था
1: और जबरदस्त दिखाया गया था.
2: जबरदस्ती कहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं था
1: ऑब्वियसली,
2: जबरदस्ती नहीं था. मैं भी देखना चाहता था.
1: अच्छा
2: जबरदस्ती मुझे तो दिखाई गई.
1: डेविल वेयर्स प्रादा
2: मतलब
1: उसके बाद तो मैं खुद सॉरी फील कर रही थी कि यार मैंने तो बेचारे को टॉर्चर ही कर दिया है.
2: नहीं कोई बात नहीं, ठीक था. मतलब मेरिल स्ट्रीप को तो मैं भी देखना चाहता था तो
1: also
2: good. Yeah, मतलब मेरिल स्ट्रीप, मैं कंपेयर नहीं कर रहा दोनों को, मगर मेरिल स्ट्रीप को मुझे बहुत, मैं इज्जत करता हूँ उनकी बहुत.
1: राइट
2: तो मुझे वैसा ठीक था. बट मूवी वो भाई डेविल वेयर्स प्राडा 2 मूवी देखने के बाद मैंने खुद से पूछा क्यों.
1: Somewhere down the line, I was also asking myself the same.
2: क्यों?
1: But I was a fan of the first one. So, मैं सिर्फ उस nostalgia के पीछे गई थी.
2: अच्छा.
1: And it served that. So, I'm fine with it. It's okay.
2: कोई नहीं होता.
1: Please don't focus on the story.
2: जी बिल्कुल.
1: तनिषा के साथ हैं आप और साथ में सुदेव भी हैं.
2: तीन टब पॉपकॉर्न लेके जाना. वो डिस्ट्रैक्ट कर लेगा तुमको आराम से.
1: या आई थिंक आधी भी नहीं हुई थी और हमारे पॉपकॉर्न खत्म हो गए थे. नहीं
2: हाँ मैं चकित हो गया.
1: इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट बट या
2: मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा था कि मैंने स्टोरी का ट्विस्ट बोल दिया. क्लाइमैक्स कहने से पहले मैंने बोला ये होने वाला है करके. तनिषा बोली अरे चल वाला देख लेना.
1: हाँ पर वही हुआ.
2: वही हुआ.
1: वी हैव गॉट अ मैसेज ओवर हियर
2: जी.
1: सो सैम्स ओके उनका मैसेज आया है. गुड आफ्टरनून तासू आफ्टर लॉन्ग.
2: ओह ये.
1: सो व्हेन वी यूज्ड टू डू द मॉर्निंग शो टुगेदर सुदेव एंड आई, तब इन्होंने हमें नाम दिया था तासू बिकॉज तनिषा एंड सुदेव. सो ओहो. एंड ही सेज मॉर्निंग शो बहुत अच्छा लगता था जब आप दोनों साथ में आते थे. थैंक यू सो मच यार. बस वही नॉस्टैल्जिक फील के लिए आज हम आ गए हैं. सो बढ़िया लगा आपका मैसेज देख के. और मोहम्मद यूसुफ खान साहब भी आ गए हैं. सुदेव वेलकम.
2: थैंक यू जी. थैंक यू बहुत अच्छा लगा.
1: या सो अभी अच्छा लगने वाला है. अभी तो शुरुआत है. आप पहले अपने हालचाल बताएं, मैसेज करें और 3311106 पर बताएं कि हाउ हैज द डे बीन सो फार, व्हाट्स द मूड फॉर दिस सैटरडे, क्या प्लान है अभी इवनिंग का, सब जानना चाहती हूँ. आ जाओ फटाफट
2: बता दीजिए. फिलहाल तो दिल का धागा खोल दीजिए, बहा दीजिए अपने जज्बातों को
1: फुल विस्तार से.
2: वाह क्या बात.
1: ओह माय गॉड.
2: हिंदी शब्दकोश लगता है आज ये चक्कर आई है.
1: तो डिक्शनरी कहाँ गया है ना, आर पेज की.
2: जी जी नहीं ऑक्सफोर्ड.
1: Yeah, sure. Let's listen to the cool song of the hour. Stay tuned and you've been there.
2: Meri jaan.
3: Cool song.
4: Radio Olive par. Aane wala gaana. Cool song of the hour.
5: Song of the hour. Song.
6: Kya baat hai, sir? Kya baat? Ye baat hai.
3: Cool song.

0: तनिषा
1: तनिषा ये जो लास्ट में अदित साहब ने बोला ना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैंने अपने लिए ले लिया है।
2: हाँ हाँ लोग भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गानों का मतलब ये सब इंटरप्रेट कर ही लेते हैं, पर कोई बात नहीं, होता है, इसमें गलत क्या है ना।
1: वेरी वेरी नॉर्मल,
2: बिल्कुल वेरी नॉर्मल।
1: यस
2: यस,
1: डू व्हाटएवर यू वांट टू डू टू मेक योरसेल्फ हैप्पी।
2: एग्जैक्टली,
1: हाँ जी। और आज इंस्टाग्राम पे मैं सुबह से एक कोट बार बार सुन रही हूँ।
2: अच्छा, देख रहे हो सुन रहे हो?
1: एक ही बात है।
2: अच्छा,
1: देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट।
2: अच्छा,
1: कि क्या था भूल गई।
2: अरे सुबह से सुन रही है, याद नहीं।
1: वो अभी उदित जी ने मेरी तारीफ कर दी ना, तो मैं ऐसे लॉस्ट।
2: नहीं, आपकी गलती नहीं है। आप कितने कितने साल से आप यहाँ पे, मतलब धरती पे?
1: एक्सक्यूज मी,
2: मतलब करोड़ों साल तो हो ही गए होंगे, तो याददाश्त थोड़ी तो बुरी हो ही जाएगी।
1: कमिंग बैक टू द कोट, किसी को कुछ नहीं आता है,
2: किसी को कुछ नहीं आता है,
1: सबका वक्त आता है,
2: सबका वक्त आता है,
1: और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है।
2: भाई ये सही बात कही आपने,
1: इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस।
2: वक्त का खेल है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हम ग्रुप स्टडी के लिए जाते थे, तो मेरा एक दोस्त है भरत, बहुत ही जिगरी यार है मेरा, ठीक है। भरत की खासियत यह है कि भरत अगर मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करता है ना उसके लिए कुछ करने के लिए, तो मतलब जैसे जाकिर खान के लिए कुंतल है वैसा है भरत।
1: We सारी, all have one कुंतल in our life.
2: सारी दुनिया कहती है राइट लेना है, भरत बोलेगा लेफ्ट लेना है,
1: लेफ्ट ले लो।
2: तुम लेफ्ट ही लेते हो
1: और तुम्हें पता है कि नहीं लेना है,
2: नहीं
1: पर तुम ले लेते हो,
2: ले लेते हो, क्योंकि हम करते हैं ऐसा, ठीक है।
1: प्यार है भरत से, कुंतल से
2: है वैसा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे कि जाकिर खान की लाइफ में एक ही कुंतल था ना, मेरे पास भरमार है कुंतल की। मतलब 9 प्लैनेट 8 प्लैनेट पूरा गैलेक्सी मेरे से बोलता है कि भाई ये यहाँ जाना है, बट ये लोग आके मेरे से बोलते हैं कि भाई तू लेफ्ट ले।
1: और तू ले लेता है?
2: मैं लेफ्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब
1: कुछ नहीं सीख रहा है इंसान जिंदगी में।
2: एक बार भरत के पापा आए, हम पढ़ रहे थे बैठ के, तो भरत के पापा बहुत मस्त आदमी, बिल्कुल बढ़िया इंसान, मतलब बहुत ही मस्त। उन्होंने आते ही पूछा भरत से कि कौन सा सब्जेक्ट है। भरत को सब्जेक्ट का नाम याद नहीं, ठीक है। 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, वो 4 दिन से मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसे सब्जेक्ट का नाम याद नहीं है, बट उसे टॉपिक्स याद है, ठीक है। तो उसके पापा ने बोला कि मैं तुम लोगों को एक ही बात बोलूंगा, मैं एक ही एडवाइस दूंगा, और कुछ मैं तुमसे एडवाइस ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है वैसे बोलना। मेक श्योर दैट यू आर द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।
1: ट्रू, इट मेक्स।
2: ये तीनों चीजें अगर कॉन्ग्रुएंस में आ गई तो भाई अनस्टॉपेबल इंसान, अनस्टॉपेबल।
1: सही बात है।
2: तो ये एक बहुत बड़ा, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने बोला कि टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम शायद सही इंसान हो सकते हो,
1: पर गलत टाइम पे सही जगह पर हो सकते हो।
2: तो भाई तो गलत टाइम पे, तो इसलिए बहुत सारे रिश्ते भी ऐसे होते हैं, जैसे कि जाकिर भाई ने बोला है कि कभी भी कोई बुरा नहीं होता है एक रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग जरूर होते हैं, मैं कभी भी जनरलाइज नहीं करूंगा, मगर हर रिश्ते का एक टाइम होता है, तो टाइम जब खत्म हो जाता है तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो।
1: ओह माय गॉड,
2: बहुत गहरी बात कर दी ना मैंने।
1: क्या हो गया, सब ठीक है कि नहीं?
2: मैं डिक्शनरी खा के आया हूं, तो उसमें बहुत भारी
1: डिक्शनरी में ये सब भी आता है। कौन सी डिक्शनरी है ये?
2: मैं थेसोरस भी लेके खा गया था।
1: Well, we have got some messages over here.
2: Okay.
1: So, संधू जी ने हमें गुड आफ्टरनून कहा है
2: दुकान से।
1: जी हाँ, तुझे इतनी दूर से दिख रहा है?
2: अरे मैं जानता हूँ ना,
1: बढ़िया आई साइट है इसकी।
2: हरपाल संधू आए।
1: और सैम्स का फिर से मैसेज आया है, ऑलवेज वेलकम। बाय द वे, वी हैव टू थैंक Radio Olive for entertainment, information, latest updates, and most important thing is we don't feel alone in Qatar after 106.3 Radio Olive started here.
2: Aye, wow.
1: Thank you, Radio Olive, and specially to Tasu.
2: Oh,
1: thank you so much. That is so sweet, yeah.
2: Thank you so much. बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया आपने.
1: Yeah, यही तो हमारा ऐसे
2: fuel है, ईंधन.
1: Energize कर देता है.
2: ईंधन. हौसला.
1: अंदर का इफेक्ट देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे आ गई है।
2: जी जी जी, जिन्होंने नहीं देखा देख लो एक बार।
1: एंड वी हैव गॉट मोर मैसेजेस ओवर हियर। मोहम्मद यूसुफ साहब कह रहे हैं डिक्शनरी भी खाते हो क्या सुदेव?
2: अरे तनिषा के संगत का असर है जी, क्या करें, क्वासों तक खाना पड़ जाता है हमें।
1: क्वासों तो अच्छी चीजें खाने के लिए।
2: भाई ने मैसेज भी होगा, फोटोज भेजे हैं।
1: नहीं ये तुम्हारे हाँ फोटोज भेजे हैं। ब्रदर हाउ आर यू, ही इज आस्किंग।
2: मैं बहुत बढ़िया इदरीस भाई, आप बताएं क्या हाल है। इदरीस भाई हमें सुबह हर दिन जो है बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज भेजते हैं,
1: तो उन्होंने अपनी स्ट्रीक ऐसे दिन में भी
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल रखी है. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच.
1: अजम का भी मैसेज आया है. नो इट्स इंतजार एक्चुअली.
2: अच्छा इंतजार भाई. हाँ
1: सो कीप मैसेजिंग गाइस. बढ़िया लग रहा है. फिलहाल विकी कौशल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. वी विल मेक श्योर कि सुदेव डांस ना करे तौबा पे.
2: अरे मैंने भेजा उनको, उन्होंने बोला कि भाई क्या नाचे हो.
1: ब्लॉक कर दिया उसने.
2: अरे ब्लॉक तो निशा को किया था दिलजीत ने.

0: एसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us, we complete your home.
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा दीवाना मूवी से कुमार सानू साहब की आवाज में सोचें कि तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये मूवी तो तुमने देखी नहीं होगी वैसे।
1: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखी
0: मैंने। When I watch this movie and then जब इंटरवल के बाद शाहरुख खान आता है, अरे शाहरुख खान इतना पुराना है, तब ऐसे रियलाइजेशन नहीं थी
1: आपको, ये रियलाइजेशन
0: तब, ये रियलाइजेशन नहीं थी, छोटी थी तब की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही
1: हूँ। आप तो छोटे, आप जब छोटे थे तो डायनासोर उड़ते थे ना यहाँ पे,
0: भूल गई थी मैं।
1: अच्छा,
0: कि तुझे मेरी सच्चाई के बारे में पता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: But right now we have to talk about something really important,
1: okay,
0: which has happened at 35th edition of Doha International Book Fair.
1: Okay.
0: उन्होंने लॉन्च किया है दिस इज कतार एंड इट इज अ कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया प्रोजेक्ट, जो कि डॉक्यूमेंट करता है कतर की स्टोरी को, हेरिटेज को, अचीवमेंट्स को, लोगों को, एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। इसमें प्रिंटेड बुक्स भी हैं, ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी, एंड 300 डॉक्यूमेंट्रीज आर ऑल्सो देयर।
1: क्या बात, क्या बात। और ये बहुत ही खास इसलिए भी है क्योंकि ये जो एडिशन है दोहा बुक फेयर का, वो सबसे बड़ा भी है, अभी तक का सबसे बड़ा एडिशन है ये।
0: Exactly.
1: और यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.8 मिलियन बुक्स जो है,
0: correct,
1: जो आ रहे हैं, याद है मतलब
0: 910 booths. I was wondering कि आप जाओगे तो कवर कैसे करोगे,
1: तो हर दिन जाना पड़ेगा जब तक ये है तब जाके
0: If you haven't so far, you need to go 14th से लेकर 23rd मई तक ही होने वाला है DECC में, and it is an experience यार। और इस बार इतनी नई नई चीजें हैं, you know, the book advisor is also there, it can help you finding the book you would like to read.
1: जी जी जी जी जी।
0: So do check it out और बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिलहाल सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में बैड्स ऑफ बॉलीवुड से, तू पहली तू आखिरी।
1: क्या बात,
0: Stay tuned and Jio Bindas.
1: मेरी जान।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 million rials ड्रीम बिगर

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव
1: रिचार्ज इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: सुल्तान मूवी से बबन की आवाज में बोलिया, ब्यूटीफुल ट्रैक, इतने सुंदर इसके लिरिक्स हैं यार, और क्या गाया है
1: बबन भाई, भाई
0: हाँ यार क्रेजी,
1: बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया।
0: You're listening to Radio Alam 106.3 FM. Tanisha Arsudev is with you. All of Reach Out Children are here. And Vicky Kaushal's happy birthday. And we have a happy news.
1: Tell me.
0: Three Idiots ka sequel aa raha hai, you know, right?
1: Yes.
0: Usme chautha idiot. Vicky Kaushal!
1: What are you talking
0: about? Yes, I was so happy. I was like, you know, all three, they made a mark with three idiots. And abhi usse kuch bhi kam हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चौथा इडियट जो उन्होंने ऐड किया है वो बढ़िया ही चूज किया है।
1: बट मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि इन चारों इडियट्स में से सबसे यंग माधवन ही लगने वाला
0: है। यार दैट मैन इज समथिंग एल्स यार।
1: हाँ भाई, कुछ तो अलग लोचा है उनके साथ।
0: किसी भी रोल में डाल दो वो घुल जाता है इंसान।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत एक अलग एक कला है वो। कैसे अभी अगर हम धुरंधर में देखे या फिर उससे पहले अगर हम तनु वेड्स मनु में देखे, थ्री इडियट्स में देखे, साथिया में थे वो, और इसमें रहना है तेरे दिल में,
0: ओह माय गॉड,
1: रहना है तेरे मैडी, दिल में, मैडी मैडी, वो भी तमिल में वही थे।
0: Amazing that man is.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उनका एक बहुत ही फेमस एक मूवी है तमिल में, उसका नाम मुझे याद नहीं, बट उसमें उन्होंने एक फादर का रोल प्ले किया है।
0: Uh-huh.
1: और इतना मैच्योर तरीके से रोल उन्होंने किया है। उसका एक बहुत ही फेमस गाना है उरु देवम तंदपुवे करके, बहुत ही अलग लेवल का गाना, बहुत ही अलग लेवल की मूवी। मतलब मैडी का जो रेंज है वो काफी बढ़िया,
0: बहुत वर्सटाइल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दैट इज आई वाज सेइंग, जो भी रोल आपको आप उनको दो वो घुल जाते हैं उसमें,
1: वही
0: लगता ही नहीं कि कोई अलग इंसान प्ले कर
1: रहा है। एग्जैक्टली।
0: वेल ऑन दैट नोट, विकी कौशल का बर्थडे है। आई वुड लाइक टू प्ले मैडी सॉन्ग, बट Vicky deserves it today.
1: Okay,
0: so,
1: Vicky bhai.
0: Yeah, let's Toma. Enjoy. No. Bad news se hai, but
1: Achha.
0: Mere mehboob, mere sanam. Stay tuned and you win this.
1: Meri jaan.
2: मसान से लेके उरी तक हर किरदार बेमिसाल।
3: ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
2: विकी कौशल का स्वैग आज भी है कमाल।
4: I understand noun, pronoun, semicolon, comma, ते full stop.
5: उसने तेरा तौबा, तौबा,
2: Happy birthday to the versatile actor, Vicky Kaushal.

0: मैं बताती हूँ क्या हुआ है जो इतना बॉदर कर रहा है.
1: बताओ.
0: वीकेंड खत्म हो गया है.
1: क्या बात कर दी यार आपने. क्यों कर दी ये बात. अब 5 दिन के लिए इसी दुख में जीना पड़ेगा. उन 2 दिनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा रोते रोते हंसते हंसते. कैसे करेंगे हम.
0: मैं आज रात से ही अगले थर्सडे इवनिंग के सपने देखने लग जाऊंगी.
1: मैंने तो पिछले हफ्ते से इस आने
0: ये थोड़ा ज्यादा
1: थोड़ा.
0: अच्छा बाय द वे हम वीकेंड पे चिल कर रहे थे और इधर इंस्टाग्राम ने एक नया अपडेट निकाल दिया.
1: अच्छा
0: यार ये क्या हर दूसरे दिन कोई नया अपडेट निकालते पागल हो गए.
1: मेरे पेज में भी थोड़े चेंजेस आए हैं. तो जब हम पहले स्टोरी देखते थे तो कितनी स्टोरीज बची है उसका जो एक लाइन होता था वो नीचे आ गया.
0: एग्जैक्टली.
1: बट वो मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं आया है.
0: मेरे भी नहीं आया.
1: अजय अकाउंट में ही आया है. और मैं सोच रहा था ऐसा क्या हो रहा है क्योंकि एक दिन मैं देख रहा हूँ स्टोरी देख रहा हूँ मतलब हाँ आगे कौन सी स्टोरी है. अरे कितनी स्टोरी बची दिख नहीं रहा. मैं बहुत ऐसे ये डर गया कि कहाँ गया. मुझे कैसे पता चलेगा स्टोरीज किसकी कितनी बची है.
0: ओह माय गॉड.
1: फिर मैंने देखा नीचे रखा था. अरे यार
0: स्टॉक कर रहा था तू.
1: स्टॉक नहीं कर रहा था यार मैं स्टोरीज देखते रहते हैं तो.
0: नहीं जो नया अपडेट आया है वो एक्सट्रीमली यूजलेस है मुझे ऐसा लगता है. इंस्टाग्राम ने इतने बढ़िया बढ़िया फिल्टर हमें निकाल के दे दिए हैं कि विदाउट फिल्टर्स अब फोटो लगाना पाप सा फील होता है
1: आपको.
0: हाँ लोगों को मे को भी. ठीक है. नाउ इट हैज कम अप विद दिस न्यू फीचर विच इज कॉल्ड इंस्टेंट्स.
1: ओके
0: ओके. और वो आपको अपने डीएम वाले टैब में ही नजर आएगा. वहां पे आप अनएडिटेड फोटो भेज सकते हैं अपने क्लोज वंस को अपने फ्रेंड्स को. यू हैव टू लाइक डिसाइड द ग्रुप एंड वही 24 आवर्स वाला सीन है. आई डोंट नो इसकी क्या जरूरत थी क्या कमी ऐसी हमें महसूस हो रही थी.
1: भाई मुझे पहले ये बताओ कि इंस्टाग्राम का जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है जो नए नए आइडियाज लेकर आता है बात तो मुझे उनसे करनी है.
0: अरे एडम मोसरी खुद ऐसे आता है इंस्टाग्राम पे मस्त खुशी खुशी ये सब बताने के लिए कि हम ये फीचर लेकर आए हैं.
1: अच्छा उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये बताते हुए.
0: नॉट एट ऑल.
1: उसे लज्जा फील नहीं हुई कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ.
0: 0% लज्जा.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई ऐसे लोग.
0: So, yeah, अगर आपके फोन में ये अपडेट आ चुका है आपके इंस्टाग्राम पे तो जरा बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा. मुझे तो काफी यूजलेस महसूस हो रहा है.
1: अरे
0: वो जो नोट का भी आया ना मुझे अभी तक उसका कोई सेंस बन ही नहीं रहा है. आई हैव नेवर यूज्ड दैट फीचर एट ऑल.
1: अगर हम ऐसे इन मामलों में जाए तो हम रियलाइज करते हैं कि ऑलमोस्ट सोशल मीडिया का कोई सेंस नहीं बनता.
0: लेट्स नॉट गो दैट डीप यार प्लीज. There is one thing which I want Instagram to do is कि स्टोरी पे जब आप कोई वीडियो डाल रहे हो ना वहीं पे उसको एडिट करने का लाइक कट करने का ऑप्शन आ जाए.
1: वो
0: नहीं है. कहाँ है वो. मेरे पास तो नहीं आता.
1: 60 सेकंड के ऊपर की वीडियो तो आप कट कर सकते हो.
0: I don't get that.
1: 60 सेकंड के ऊपर का वीडियो तो आप कट कर सकते हो स्टोरी पे. 60 सेकंड से नीचे है तो आप नहीं कट कर सकते.
0: Exactly.
1: 60 सेकंड के नीचे
0: नहीं तो वो तो खुद ही कट हो जाता है ना.
1: हाँ.
0: नहीं वो नहीं.
1: अच्छा जो 60 सेकंड
0: एग्जैक्टली. आई हैव टू गो ऑन अनदर एडिटिंग ऐप. एडिट्स पे जाना पड़ता है. वहां जाके फिर मैं उसको कट शॉर्ट कर रही हूँ और फिर आई एम पोस्टिंग द वीडियो अगेन. इट्स टू मच हैसल. जो एक काम की चीज है वो नहीं है लेकर आए. नहीं दिस इज अ इम्पोर्टेंट वन. आई थिंक पीपल विल अग्री विद मी. से यस. Sending Andan Sami ki awaaz mein salaam hai ishq movie se dil kya kare. By the way Simran ne baat ki thi Andan Sami sahab se. Aapne story to hamari aaj dekhi li hogi. Jaldi aapko interview dekhne ko milega. Bahut amazing tha. Stay tuned and you've been there.
1: Meri jaan.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
3: लगा और हो जा रिचार्ज
4: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive Recharge
5: In association with
6: Homes Are Us We complete your home Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath aur mere saath Sudeep bhi is waqt Olive Recharge mein.
2: Aur yahan pe abhi humne kafi classic legendary gana suna hai.
1: Bahut amazing.
2: Aur is gaane ka ek unreleased version hai jisme bahut hi khoobsurat lyrics hai jahan pe start to normal hota hai but uske baad aata hai पहले तो हवा उन जुल्फों से
1: गा के सुना यार ऐसे थोड़ी होता है
2: कोशिश करते हैं पहले तो हवा उन जुल्फों से खुशबू भी चुरा कर लाती थी
1: नहीं सुने
2: अरे बुलिया मैंने अरे बुलिया मैंने खुशबू भी चुरा कर लाती थी
1: हाँ ठीक है हम हम हम सोचते हैं इसके बारे में
2: गलती हो गई नहीं मैं बताता हूँ यार लिरिक्स बहुत मैं गाके गाते हुए भूल जाता हूँ पहले तो हवा उन खुशबू से पहले तो हवा उन जुल्फों से खुशबू भी चुरा कर लाती थी
1: आपको पता है इसकी लिरिक्स आपने सुना है ये अनरिलीज्ड वर्जन
2: वैसे बहुत प्यारा वर्जन है और आवाज भी धीमी आ जाती थी आवाज से भी महरूम हुए
1: इस बात का दुखड़ा रहता है ब्यूटीफुल
2: है ना बहुत प्यारा है बट ये दो शब्द जो है मैं भूल गया बीच में
1: इट्स ओके हैपेंस कई बार जैसे सुदेव इज गुड ये हैबिट है इसकी ही सिंगिंग एनी सॉन्ग और ये भूल जाएगा एंड हम सबको पता है ये बात कि ये गलत गा देगा कॉन्फिडेंस के साथ सो समटाइम्स व्हेनेवर ही इज लाइक यू नो आउट देयर इन पब्लिक ऐसे गाने की कोशिश कर रहा है मन में चलता है भूलना मत बेइज्जती मत कराना भूलना मत बट नहीं ठीक हो जाता है
2: जी कोई
1: जितना
2: बात
1: गाया अच्छा गाया आपने
2: थैंक यू
1: मेरे आशीर्वाद से आप बढ़िया कर रहे हैं
2: आवाज से भी महरूम हुए इस बात का दुखड़ा रहता है
1: वाओ ब्यूटीफुल आवाज तो वैसे अच्छी थी मुझे हम यहाँ पे गूगल कर लेते हैं लिरिक्स नो वरीज यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: उस उसको तो रहना ही है। ऐ दिल है मुश्किल मूवी से क्यूटी पाई, बड़ा ही प्यारा गाना ओनली ऑन रेडियो ऑल।
1: यार ये मेरे बारे में गाना बना देते हैं क्या?
0: शट अप। 106.3 एफएम तनिषा और सुदेव है आपके साथ
1: जी।
0: एंड एक बहुत बढ़िया चीज मैंने पढ़ी चाइना के बारे में। सो चाइना में एक रूल है कि जो इंटरनेट पॉपअप एड्स आ जाती है ना, व्हेन एवर यू गो टू अ वेबसाइट एंड देन 10 करोड़ और डैब्स खुल जाते हैं। एग्जैजरेट कर रही हूँ। या सो चाइना में वह अलाउड नहीं है।
1: अरे क्या
0: और अगर वो आ रहे हैं तो एक क्लिक से बंद हो जाना चाहिए और उस पर दोबारा से कोई और नहीं खुलना चाहिए।
1: ये बिल्कुल।
0: एंड आई हैव सीन अ फ्यू वेबसाइट्स जो कि क्लोज वाला जो बटन है क्रॉस उसको भी घुमाते हैं, एज सून एज यू मूव योर कर्सर वो घूमता जाता है, यू कैन नॉट होल्ड इट।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे साथ जो है यहाँ पे ऐसा गेम खेला जा रहा है। हमारे स्क्रीन को भी जो है कॉमोडिफाई कर दिया है, हमारे स्क्रीन टाइम को भी जो है एक कमोडिटी बना के लोग जो है बेच रहे हैं। सब बिजनेस, दिस इज बिजनेस, ठीक है, सब बिजनेस का हिस्सा हो चुका है। इस बिजनेस के हिस्से में हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो सेंसिबल चीजें हैं उनको भूल रहे हैं।
0: Exactly.
1: ऐसे स्टेप्स जो है अच्छे हैं, ऐसे रेगुलेशन जो है आने चाहिए।
0: आई थिंक एवरी कंट्री शुड apply that, implicate this, because it is super annoying.
1: True, you are exactly.
0: और कभी कभी तो वो पॉपअप्स ऐसे होते हैं कि वो दूसरा एकदम ब्राउजर ही खुल जाता है और हमें पता ही नहीं है वो घंटों से खुला हुआ है।
1: मैं कुछ बोले, एक वर्ड बोलने वाला था ना, भूल गया। मतलब इतने पैशन के साथ आप बात कर रहे थे, एग्जैक्टली करके मैं एक और वर्ड बोलने वाला था पर मैं याद ही नहीं आ गया। मुझे लगता है वो डिक्शनरी का असर खत्म हो गया है।
0: स्पीचलेस हो गए हो?
1: जी हाँ, एक और ऑक्सफोर्ड का डिक्शन निकालना पड़ेगा। बढ़िया, बात बिल्कुल सही कही गई है कि ऐसी चीजें जो हैं कहीं हद तक ठीक है हम समझते हैं, मगर जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं
0: जी।
1: अभी कुछ दिन पहले मैं तनिषा को बता रहा था, एक बार ऐसा हुआ कि हम एक लिंक से कुछ चीज जो है देखने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही हम लिंक में क्लिक करते हैं या फिर उस चीज को, उस वीडियो को पॉज करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरा टैब खोल देता है।
0: एग्जैक्टली,
1: तो कुछ नहीं हो पा रहा था, तो बहुत ज्यादा हमारे कन्वीनियंस को वो चीज जो है हर्ट कर रहा था।
0: इतना बुरी तरह से वो हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे होते हैं ना कि कितना चाहते हो तुम इस वेबसाइट पर रहना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक अनोइंग चीज है जैसे तनिषा ने बोला। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी बताना चाहूंगा, तनिषा हम अगला गाना कौन सा प्ले कर रहे हैं?
0: रूबरू, फहीम अब्दुल्ला और चिन्मय की आवाज में। अच्छा। डकैत मूवी।
1: अरे अरे क्या बात, क्या बहुत प्यारी मूवी। वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कुछ टाइम से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि मैं कभी कुछ भी बोल देता हूँ, लोग गाना बना देते हैं उस पे।
0: इज इट?
1: हाँ सही में।
0: किस चीज का बनाया है?
1: अरे मैं बताता हूँ, उस दिन मैंने कशिश को भी बताया था सुबह सुबह कि बहुत सारे मेरे ऐसे बोलियां जो है, मेरे जो स्टेटमेंट्स हैं लोग गाना बना देते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे कि मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया था, बात की थी, तो पूछा क्या हाल है, तो मैंने उससे यही बोला कि भाई बहुत दूर हो तुम, इतनी दूरी सही नहीं जाएगी। तो वहाँ पे आतिफ ने गाना बनाया, दूरी सही जाए ना।
0: I was listening to all this nonsense very seriously. Why did I even expect something good out of it?
1: Even गाना बना दिया।
0: Guys, let's enjoy this original track, Rubaru, only on Radio Olive, Jubindas. Rubaru.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha aapke saath, aur main akeli nahi hu, mere saath Sudev bhi hai, Olive Recharge par.
2: Yes, main hu aapka mezban, Sudev.
1: Ji, aur Google ki baat karte hain, Gmail ki to be specific.
2: Ji, bataiye.
1: So, jab bhi aap Gmail pe account banate hain, aapko 15 GB storage milta hai, right?
2: Usually aisa hi hota hai.
1: Haan, to abhi dhoka de diya hai naye naye accounts ko unhone.
2: Kya bula unhone?
1: जो कुछ नए अकाउंट्स बने हैं रीसेंट टाइम्स में उन्हें सिर्फ 5 GB का स्टोरेज मिला है बिना बताए और अब कह रहे हैं जो भी अकाउंट्स फोन वेरिफिकेशन नहीं कर रखा है जिन्होंने उनको 5 ही मिलेगा एंड दे हैव चेंज्ड इट टू अप टू 15 GB नॉट 15 GB अप टू
2: बहुत दिमाग लगाया उन्होंने
1: छोटे छोटे शब्दों से कैसे बड़े बड़े बदलाव कर देते हैं
2: जी बिल्कुल यही तो क्या कहते हैं मैं कुछ टाइम पहले मेरे YouTube फीड्स में ऐसे रील्स शॉर्ट्स आने लग गए थे जिसमें लोग बताते थे कि कैसे उनको किसी ने धोखा दिया होता है या फिर उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया होता है देन लीगल तरीके से जब चीजें जाती हैं तो उन्होंने लीगली उस क्लॉज को ऐसे लिखा होता है कि उनके फेवर में चीजें आ जाती है और जो लोग उन्हें धोखा देते हैं या फिर उनके साथ दगा करते हैं वो एंड में उनके साथ बुरा होता है
1: डिड वी जस्ट कंपेयर जीमेल टू पीपल्स लाइक पर्सनल रिलेशनशिप्स
2: नहीं सुनो मैं बता रहा हूँ क्या होता है तो जैसे कि आपने बोला ना कि ऐसे वर्ड्स में ये लोग उलझा देते हैं ठीक है वैसे ही ये चीजें जो है लाइफ में भी चलती हैं मतलब बहुत ही सटल नुआंसेस होते हैं
1: ट्रू वो आप पकड़ नहीं पाते
2: वो बहुत ही खेल जाते हैं लोग
1: और दुनिया बहुत स्मार्ट है
2: और मैंने इसी के बारे में एक दिन सुबह बात करी थी कि यार बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि यार टू यू नो यू आर टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड
1: Too good to be true.
2: Yeah, मेरे लिए नहीं बोल रहा मैं इन स्टेटमेंट्स के बारे में बोल रहा you know.
1: Sure.
2: Yeah, but ये स्टेटमेंट जब भी कोई बोलता है मैं सोचता हूँ कि यार ये नौबत क्यों आ रही है इस स्टेटमेंट बोलने की ठीक है चीजें अच्छी हो सकती हैं ना
1: Exactly.
2: Steps लेना है ना है ना
1: बट वही है ना कि सबका नजरिया सेम नहीं है सबके ओपिनियन सेम नहीं है सबका दिमाग सेम नहीं है
2: क्या बात कर दी आपने ये आपने बढ़िया वाली बात कर दी
1: टू एक्सपेक्ट दैट इफ यू आर गुड टू द वर्ल्ड विल बी गुड टू यू
2: या दैट इज आल्सो अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन
1: एग्जैक्टली
2: इसी खुशी में निकालो जो वादा किया था आपने 500
1: कूल सॉन्ग ऑफ द आवर यस अभी आ रहा है आपके लिए स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास मेरी जान Cool song. Radio Olive par aane wala gana Cool song of the hour.
3: Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai? Cool song.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: नया लुक नया फील कारफोर विला जियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विला जियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विला जियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
6: Olive Recharge
7: In association with
8: Homes Are Us We complete your home
9: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
10: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Aisha.
1: Neeti Mohan ki awaaz mein Jia Ray from the movie Jab Tak Hai Jaan Only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aur Sudhir mein aapke saath is waqt.
2: Ji haan, yahan pe hum ek bahut hi important baat aapke saath share karna chahenge.
1: Dhyan se suniyega.
2: Dhyan se suniyega meri baat ko, theek hai? Hum kuch time se jo hai ek cheez jo hai cook up kar rahe the. Pichle hafte se jo hai humne usko launch kar diya tha. Tanisha ne bataya bhi hoga.
1: It's like a baby to us.
2: Yeah, the Executive Lens podcast. तो ये हमारा पॉडकास्ट सीरीज है जहाँ पे बिजनेस लीडर्स आते हैं, बिजनेस ओनर्स आते हैं, डिसीजन मेकर्स आते हैं, वो अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं, अपने लीडरशिप जर्नी के बारे में बात करते हैं.
1: Exactly.
2: क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनकी जिंदगी में उन्होंने फेस किया है जिसके कारण जो है उनका नजरिया बदला है.
1: हाँ.
2: तो जो है हमारा एपिसोड का एक ग्लिम्स जो है आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएगा, लिंक्डइन में दिख जाएगा, साथ ही साथ YouTube में भी दिख जाएगा. और फुल वीडियो YouTube में हमने अपलोड करा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं.
1: और फुल पॉडकास्ट आप रेडियो पर हर सैटरडे सुबह 8 से 10 भी सुन सकते हैं. एंड इट इज बेसिकली टू इंस्पायर पीपल आउट देयर कि यू नो इफ दीस पीपल कुड डू, दे बिलीव्ड इन देयर आइडियाज एंड देयर एफर्ट्स एंड उन्होंने वो हर्डल्स जो भी थी उन्हें क्रॉस कर लिया, तो आप भी कर सकते हो यार.
2: जेब बात कर दिया.
1: बहुत ही अमेजिंग लोगों से अभी तक मिले हैं हम फॉर ऑल दीज यू नो पॉडकास्ट वी हैव बीन रिकॉर्डिंग और काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं उन सबके पास बताने के लिए. तो डू नॉट मिस दिस आउट, चेकआउट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड लीव अ नाइस कॉमेंट ओवर देयर. हमें पता चलना चाहिए कि चीजें आप तक पहुंच रही है.
2: बिल्कुल.
1: और अभी पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही कमाल का गाना विकी कौशल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए.
2: अब तो डांस ही कर दो तनीषा मैडम. तौबा में.
1: हाँ ठीक है, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
2: मेरी जान.
3: मसान से लेके उरी तक हर किरदार बेमिसाल.
4: दुख का खत्म नहीं होता बे.
3: विकी कौशल का स्वैग आज भी है कमाल.
5: आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन सेमीकोलन कॉमा ते फुल स्टॉप.
6: हुसन तेरा तौबा.
3: हैप्पी बर्थडे टू द वर्सेटाइल एक्टर विकी कौशल.

0: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
5: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
6: ऑलिव रिचार्ज
7: इन एसोसिएशन विद
8: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
9: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
10: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 million riyals ड्रीम बिगर।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो गया मेरे जाने को मेरी जान. मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे नए हफ्ते की शुरुआत फुल एंथुजियाज्म पॉजिटिविटी के साथ. सब बढ़िया होगा इंशाल्लाह, है ना. और अगर अभी तक अपने लिए वक्त नहीं निकाला है तो हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, फटाफट से टाइम निकाल लो. यू नो इफ यू गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स ऑफ योर डे ना, बहुत है आपके लिए. यस, डू दैट प्लीज. एंड अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरी जान. और रेडियो ऑलिव को फॉलो कर लीजिए फटाफट से अगर अभी तक नहीं किया है सोशल मीडिया पे, तो रेडियो ऑलिव .qa इज दी हैंडल. और सुनते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास मेरी जान.
1: रेडियो ऑलिव पर
2: fresh, fresh, fresh, fresh, fresh है, ये गाना fresh है.
1: Fresh song of the hour.
2: ये गाना

0: to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

हां जी मैं क्या जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सिमरन गौरव के साथ है जबरदस्त इवनिंग जो है वो शुरू हो चुका है। फ्राइडे चला गया यार, कितनी जल्दी चला जाता है यार, कुछ पता भी नहीं लगता कोई वीकेंड आता है यार। मेरे बॉस को बोलना पड़ेगा भाई, मनाना पड़ेगा, सैटरडे की भी छुट्टी चाहिए यार, लेकिन फिर आप लोगों का ख्याल आ जाता है यार, मतलब दो दिन की छुट्टी चाहिए तो लंबा गैप पड़ जाएगा, आप लोग भूल तो नहीं जाओगे। भूलने तो मैं नहीं दूंगी, पूरी अटेंशन चाहिए, चार घंटे अब नहीं है क्योंकि जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। कैसा रहा आपका वीकेंड बताइएगा, वीकेंड के बारे में भी बात करेंगे वापस लौट के, मैं अपना भी बताऊंगी आप भी बता दीजिएगा, लेकिन आज का दिन आपका कैसा रहा वो बताइए। 3311063 पर यह मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर TNC अप्लाई
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, main hu Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: I'm in number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: कैसा रहा आपका वीकेंड? फ्राइडे जिस दिन मैं अपना फोन रखती हूँ डीएनडी पे और मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होता है अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम ना, फिर तो मुझे निकलने पड़ता है साहब। मतलब फ्राइडे में उठ के नहा के रेडी होने में बहुत ज्यादा जान जाती है मेरी, तो या मैंने अपना वही फेवरेट हाई प्रोटीन जो था वो पास्ता बनाया, वाइट सॉस पास्ता, और बड़े मज़े से मैंने खाया और मैंने बड़े मज़े से नेटफ्लिक्स जो था वो देखा। इतना ज़्यादा कुछ मैं देख नहीं पाई, लेकिन मैंने क्या देखा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट थर्सडे को निकली थी मैं बाहर, पराठे वराठे खाए मैंने, एकदम पनीर प्याज वाले पराठे लपालप मक्खन डाल के उसके ऊपर चाय पी। सो या मज़ेदार सा माहौल था और कुल मिला के मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरे वीकेंड से। एक चीज़ हुई, एक भसड़ हुई थोड़ी सी, उसके बारे में लेट्स नॉट टॉक अबाउट, क्योंकि जब आपको अच्छा लग रहा होता है तो फिर आप उन चीज़ों के बारे में नहीं बात करते हो जिन्होंने आपको अच्छा फील नहीं करवाया। ओके आप लोग हो ना, आप लोग अच्छा फील करवाते हो यार। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: बाय द वे, अगर आपने हमारा सोशल मीडिया चेक किया है तो आपने एक चीज भी नोटिस की होगी, रिसेंटली जो है अदनान सामी का मैंने इंटरव्यू किया और बड़ा मजा आया यार. उनका नया सॉन्ग है ना लिपस्टिक लगा के, जिसको आप हमारे यू नो रेडियो पे भी सुन रहे हो. सो उस गाने की रिगार्डिंग उनका इंटरव्यू किया और बड़ा मजा आया. उसका टीजर वीडियो जो है हमने हमारे इंस्टाग्राम पे भी डाला है, प्लीज जाके चेकआउट करिएगा. और इसका फुल इंटरव्यू अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब पे जा सकते हैं. बड़ी ही फन कॉन्वर्जेशन रही उनके साथ, आपको देख के आइडिया जो है वो हो जाएगा, है ना. बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, क्योंकि फुल लेंथ इंटरव्यू पॉडकास्ट वगैरह वो सब हम हमारे YouTube चैनल पे डालते हैं, है ना. सिमरन गौरे आपके साथ, मैं आया जी जबरदस्त इवनिंग्स में जियो बिंदास.
1: मसान से लेके उरी तक हर किरदार बेमिसाल.
2: दुख का खत्म नहीं होता बे.
1: विकी कौशल का स्वैग आज भी है कमाल.
3: आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप.
4: हुसन तेरा तौबा तौबा.
1: हैप्पी बर्थडे टू द वर्सेटाइल एक्टर विकी कौशल.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes R Us, we complete

बात करते हैं मौसम की। मौसम जी लोएस्ट एंड विंड जो है 9 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से है एंड एयर क्वालिटी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमिडिटी वगैरह जो है वो बढ़ जाती है। सो ऐसे टाइम पे हम सबको जो है वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, जितना हो सके पानी पिए, जितना हो सके अंदर रहिए, घर के अंदर है ना, बढ़िया रहेगा। अंटिल अनलेस कोई काम जो है वो जरूरी नहीं है क्योंकि अभी तो फिर भी इतना नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ये बढ़ने वाला है। सो या अभी के लिए वेदर का हाल ये है। दिल का हाल बताना चाहें तो बता सकते हैं 3311063।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

हर कोई कैन फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा है. आलिया की लुक तो सुपर अमेजिंग यार. सारे लोग आलिया भट्ट को ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई कैमरामैन तो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, दिस एंड दैट. कोई बात नहीं भाई, उस मोमेंट पे पहुंचने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत लगती है और बहुत कुछ लगता है, दैट्स ओके. और ट्रोल की तरफ जो है वो आलिया भट्ट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. जैसे कि किसी ने कॉमेंट लिखा था कि अरे तुमको तो कोई नोटिस नहीं कर रहा, उसने बोला कि कौन, किसने बोला कि नोटिस नहीं कर रहा, कि यू नोटिस मी लव, बड़े प्यार से उसने जवाब दिया. सो बात करें अगर हम कैन फिल्म फेस्टिवल की, इसमें उर्वशी रौटेला काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उन्होंने जो ड्रेस पहना है, उनका ये कहना है कि वो जो ड्रेस है जो एकदम जड़ी हुई है बहुत सारे सलमा सितारे के साथ, वो 1500 करोड़ की है. तो इतनी सारी इंटरव्यूज देखने के बाद जिसमें वो इतना सारा झूठ भी बोलती हैं, मतलब उनकी बातें जो इतनी ज़्यादा सच नहीं होती है, बट ये 1500 करोड़ की ड्रेस वाकई में उन्होंने पहनी है, उनका ये कहना है. बाकी मुझे इतना समझ नहीं लगता भाई, मैंने कभी इतने महंगे कपड़े पहने नहीं है, ना ही मैं 1500 करोड़ की ड्रेस कभी मतलब सोचूंगी ऐसे कि पहनूं, मतलब ठीक है यार. तो उनकी ड्रेस जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है. सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास. उर्वशी रौटेला भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है उनके बहुत सारी स्टेटमेंट्स की वजह से.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਓਵਰ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
3: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: भाई बॉस के बारे में जब गॉसिप कर रहा हूँ तो डर लगा रहता है, कोई सुन तो नहीं रहा। कोई और कहीं और ही माइक ना लगे हो, मैं जिस सुनियो कि सिमरन कौर आपके साथ। अब आप सोचोगे सडनली मैं बॉस और गॉसिप के बारे में बात कर रही हूँ। एक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि अगर आप एट वर्क अपने बॉस की गॉसिप करते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब सीरियसली देखो, हेल्थ के लिए बढ़िया होगा मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बॉस ने सुन लिया तो हमारी किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ना हेल्थ के लिए, ना मेंटल हेल्थ के लिए, ना ही जॉब के लिए। बट हमारे यहाँ पे सीन ये है कि हमको हमारे बॉस की गॉसिप करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ। इतना ज़्यादा अच्छा टच वुड कनेक्शन है कि अगर हमको कोई चीज़ बुरी लगी या कुछ लगी, हम सामने बोल देते हैं और वो सुन लेते हैं। सो बहुत कम जगह ऐसा जो है वो माहौल होता है कि जहां पर आपके आपके बॉस के बीच में इतना कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं होता, आप बोल सकते हो, वो भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, तो ऐसा कोई गॉसिप करने वाला सीन है नहीं है। बट यार, अगर आपके ऑफिस में है तो थोड़ी बहुत कर लिया करें। अब रिसर्च कह रही है कि आपकी मेंटल मतलब आपकी हेल्थ के लिए सही है तो सही होगा यार, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। हाँ जी, विदास फिर मत कहना सिमरन ने बताया नहीं।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
3: Jeetne ke 4 raaste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
4: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
3: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive.
1: I'm a number one. The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
3: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
0: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We complete your home.
8: I'm the number one radio
9: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सीक्रेट्स जो आप किसी के साथ शेयर करते हो ना, बहुत नाजुक होते हैं यार वो।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हां जी, जब प्यार होता है, दोस्ती होती है, तो उस टाइम पे आपका कनेक्शन इतना बढ़िया होता है, बॉन्ड बढ़िया होता है, बॉन्ड जब बढ़िया होता है तो वाइब सेट होती है, वाइब जब सेट होती है तो फिर आप हर तरह की बात जो है वो करते हो, हर तरह की गॉसिप करते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिश्ते जो है ना, बहुत कम लोगों को रिश्तों का लिहाज होता है कि अगर वो रिश्ते ना रहे तो बातें वो उन्हीं के पास रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वो एक आदत होती है कि पहले जब बॉन्ड बिल्कुल सही रहता है आपके साथ तो सब बढ़िया है, लेकिन जब वो बॉन्ड नहीं रहता है तो फिर जो बातें, वो जो सीक्रेट, वो जो गॉसिप आपने उनके साथ शेयर की है, मतलब वो उनको यूज़ करते हैं आपके खिलाफ। तो कभी कभी लगता है कि जब भी हम बोलते हैं तो आप अपने लोगों के सामने दिल खोल के बोलते हो, लेकिन जब आप अपने लोगों के सामने दिल खोल के नहीं बोल रहे हो तो फिर रिश्ता रिश्ता नहीं है। बट आजकल कुछ भरोसा नहीं है यार कि आप जो भी शेयर कर रहे हो किसी के साथ, वो एक टाइम पे बाद में, रिश्ता खत्म होने के बाद या वो बॉन्ड खत्म होने के बाद, क्या वो उन्हीं के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। मेरा उसूल हमेशा ये है कि चाहे रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन वो बातें जो है वो मेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। तो अगर आप भी हो किसी रिश्ते में और वो रिश्ता आज नहीं है, तो मेक श्योर वो जो बातें उस बॉन्ड के टाइम पे थी ना, वो आप ही के पास रहे, कहीं और ना जाए। यार सिमरन गौरे आपके साथ, जियो बिंदास, ये राज का रियलिटी चेक।
1: रेडियो

0: रेडियो ऑनर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: नया लुक नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: कैच फील्स क्या है ये?
1: अच्छा जी,
2: Gen Z decoded.
1: ऐसा ही क्या?
2: दा, दा, दा, दा.
0: ऐसा ही है. जब आप किसी के लिए ऐसा रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो जाती है आपके दिल में, किसी के लिए आपके दिल में जो है वो प्यार आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कैच फील्स. अगर आपके दिल में किसी के लिए कैच फील्स हैं तो बता दीजिए, उसको बता दीजिए, मुझे मत बताइए, क्योंकि मेरे को बता के कोई फायदा नहीं होने वाला है. सिमरन गौरे आपके साथ जी, ओमिंदा जबरदस्त इवनिंग्स में.

0: are listening to. You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
3: मैं हूं अनिल कपूर

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट।

0: ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ लेकिन रेडियो को जो है वो आप और भी करीब से देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। जी हाँ, यहाँ पर रेडियो पे हम आपको सुनाई देते हैं लेकिन जो रेडियो ऑलिव का सोशल मीडिया वहां पे हम आपको दिखाई भी देते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो है वो हमारे सोशल मीडिया पे होते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का हमारा चैनल है जहाँ पे हम फुल लेंथ इंटरव्यूज पॉडकास्ट जो है वो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी पूरी टीम देखनी है तो olive.qa पे जाएंगे ना, हमारी वेबसाइट है, देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, पॉडकास्ट एंड ऑल, कोई लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट हमारा जो कोई हम इवेंट करने वाले हैं उसकी डिटेल्स होती हैं, है ना। सो सब कुछ है, बट मेक श्योर कि आप हमारे सोशल मीडिया पे जुड़े रहिए। लेकिन अगर आप कतर से बाहर जैसे ही जाते हैं तो आपके फोन में हमारी रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन होनी चाहिए, जब भी आपका मन करे आप हमें सुन लें। ठीक है, सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

टाइम पे सबसे बड़ा डर क्या होता था जब एग्जाम्स का रिजल्ट आता था? लेकिन स्कूल टाइम पे डर सिर्फ मुझे रहता था, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी इस चीज के लिए जो था वो हमको प्रेशराइज नहीं किया था कि इतने आ गए नंबर, इतने आने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बढ़िया, हम जितनी तैयारी कर रहे हैं वो देखते थे, लेकिन डांट तब पड़ती थी जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे। तो मैं बात इसलिए कर रही हूँ, मुंबई की एक फैमिली का रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके बच्चों के, उसके बेटे के 55% एग्जाम रिजल्ट आते हैं, तो उन्होंने केक बनाया जिसमें मार्कशीट थीम्ड केक था, उसके पूरी मार्कशीट बनी हुई थी केक के ऊपर, उसकी पूरी फैमिली जो थी वो सेलिब्रेट कर रही थी। जिस तरह से मुझे लगता है ना आजकल पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर है बहुत सारा, अगर पेरेंट्स जो है इस तरह से जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप अगर आप अपने बच्चों के साथ रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो इतना स्ट्रेस आजकल चल रहा है, इतना छोटी उम्र में डिप्रेशन हो रहा है यार पढ़ाई की वजह से, कंपटीशन की वजह से, वो बच्चों में नहीं होगा। अगर होगा भी तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। बट ये काफी अच्छी चीज लगी यार मुझे कि उन्होंने ऐसा मार्कशीट थीम्ड केक जो था वो अपने बच्चे के लिए 55%, वरना क्या होता है कि आजकल मैंने ये भी देखा भाई साहब 95% भी आ जाते तो भी बच्चे परेशान हो जाते और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तूने इतनी पढ़ाई की थी तो इतने कम कैसे आ गए, दिस एंड दैट। हाई साहब, कमाल है यार, अच्छा लगा मुझे। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अगर रात को सोने से पहले आपको ये लगता है कि नींद नहीं आने वाली है, पासे पलटते रहते हो, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, एक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि अगर आप रात में सोते हुए सॉक्स पहन के सोते हो ना, तो ये आपको जल्दी नींद जो है वो ला देगा, और इसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन जो है सॉक्स पहनने से होती है रात को सोने से पहले, फिर आपको नींद जो है वो अच्छी आती है। तो ट्राई करके देखिए, अगर आपको लगता है कि अरे यार आपको तो नींद ही नहीं आती है, आप तो जागते ही रहते हैं, अगर आप रील देखते रहेंगे तो आपको नींद नहीं ना आएगी, फिर सॉक्स क्या काम करेंगी आपकी, ठीक है। सो साथ में हटा दीजिए, फोन को साइड में रखिए, लाइट बंद करिए और रिलैक्स करिए, और फिर देखिए मैजिक अगर ये होता है थर्मोरेगुलेशन का। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: अरे हाँ यार, मेरे को एक चीज तो बतानी भूल गई, मैं इतनी बातें करती हूँ ना, सब भूल जाती हूँ। इस वीकेंड पे मैंने एक फिल्म देखनी स्टार्ट की जिसका टीजर मुझे काफी देर पहले जो है वो दिखाई दे गया था, तो मैंने को लगा कि यार मैं इसको देखूंगी। सैफ अली खान, मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे उनको बढ़िया कॉन्सेप्ट भी मिल रहे हैं और बढ़िया एक्टिंग करते हैं यार, बढ़िया लगता है मुझे बंदा। तो उनकी एक रिसेंटली मूवी आई है कर्तव्य, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो उसमें बने हुए हैं। काफी अलग टॉपिक पे जो है वो फिल्म बनी हुई है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेरी नींद इतनी प्यारी थी कि फिल्म मैंने आधी ही देखी है, तो अभी तक मैं आपको रिव्यू जो है वो नहीं दे पाऊंगी। बट येस, इफ यू लव सैफ अली खान और ऐसा आपको पुलिस वाली और मिस्टीरियस ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आधी देखी और मुझे अच्छी लगी है, और इसका एंड जैसा बोल रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा तो भनक होने लग गई है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि आप खुद ही देखिए, नेटफ्लिक्स पे आपको दिख जाएगी ये कर्तव्य। सिमरन गौरिया आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਓਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸੇ नाम मुझे लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मुझे आपके नाम तो नहीं पता ना अंटिल अनलेस आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे क्योंकि मेरे पास वो जरिया है जहां पर मैं आपको अपना नाम बता सकती हूँ लेकिन आपके पास जरिया है कि आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063 जी हाँ 3311063 इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है क्विकली चलिए मैं आपके नाम पढ़ने स्टार्ट कर रही हूँ परवेज इमती सभ्या अब्रार नजीमुल्ला नेहा रूमी रकीब फिरीज शम्स राजीव मौली सुमी अहमद विजय ओमेन ओमेन आई होप मैं आपका नाम जो है वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ सरिता जी मोहम्मद जी नवीन जी कादर जी रवि इदरीस जी मोहम्मद जी ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ अभिषेक जी थैंक यू सो मच मनोज जी थैंक यू सो मच अमित जी थैंक यू सो मच कुरेशी जी थैंक यू सो मच सूरज जी थैंक यू सो मच शहजाद जी थैंक यू सो मच संधू जी थैंक यू सो मच मोहम्मद आमिर जी थैंक यू सो मच रिशान जी जुल्फी जी एंड अब्दुल रहमान जी दैट्स इट फॉर नाउ अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए है ना तो सुनाई देगी आप मुझे थैंक यू लिखिए और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दीजिए जियो बिंदास

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes R Us. We complete

दोस्तों, अब सिमरन कौर के यहाँ से गल्डी माने का टाइम आ चुका है। लेकिन अभी के लिए अगले दो घंटे जो है मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए और पानी अच्छे से पीजिएगा, हाइड्रेट योरसेल्फ, ओवरथिंकिंग मत करिएगा, खाने पीने रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

अच्छा ये दिन बहुत कुछ छुपा लेता है लेकिन ये रातें नहीं छुपा पाती। दिन भर आप कितने हजारों लोगों से मिलते हैं लेकिन उनको हर कुछ नहीं बताया करते। रात में कोई एक इंसान जिसको सुनकर आपको सुकून मिलता है और जिसको आपको सुनकर सुकून मिलता है। जी हमारी अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ तो जी दिल की आवाज रेडी आपको सुनने के लिए। आप बताइए क्या हाल चाल दोस्तों। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आपके साथ मिडनाइट लाउंज में। तो आज का दिन कैसा रहा था? किसी से हंसी मस्ती हुई या फिर किसी बात ने दिल चुरा लिया? भाई रात का टाइम ना सिर्फ अपना होता है जहाँ हम दिल से बातें कर सकते हैं, तो बस दिल खोल के बात कीजिए। दिल खोल कर मुझसे गाना बताइए, कौन सा प्ले करूं आपके लिए, कौन सा सुनूं, आपकी खिदमत में ये बंदा हाजिर है जनाब। रेडियो ऑलिव का इंस्टाग्राम पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश और आपका फेवरेट गाना जो भी है फटाफट मुझे लिख के भेज दो, लेकिन हाई आरजे आकाश और आपका फेवरेट गाना। बाकी आज की रात हम दोनों के बीच सिर्फ एक रिश्ते का सिलसिला होगा, दिल से दिल तक का। भाई जिंदगी रातों में ही है तो सबसे ज्यादा रातों का मजा लो, खुद से मुलाकात करो दिल की आवाज के साथ। सीरियन टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

अच्छा, मोबाइल तो चार्जिंग पे होता है, पर हम खुद अंदर ही अंदर ड्रेन होते रहते हैं, टेंशन में उसका मैसेज आया कि नहीं आया। मैसेज में यार उसने ये क्यों लिख दिया, उसने ऐसा लिखा कैसे, थोड़ा सा फोन चार्ज हो जाए जल्दी से, उसको बताना है, उससे पूछना है, है ना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आपके साथ मिडनाइट लाउंज में। अच्छा, लास्ट टाइम कब बिना फोन के सोए थे? अच्छा, रात में नींद नहीं आती तो फोन, उदासी होती है तो फोन, और कभी कभी खुशी भी सिर्फ एक रील से बन जाती है ना। वैसे हम ना टेक्नोलॉजी से इतने जुड़ गए हैं कि अपनों से जुड़ना भूल गए। आज एक बार बिना फोन के ना सोने की कोशिश करो, नींद ना आए तो किसी अपने के पास जाने की कोशिश करो, अपने आप से मुलाकात हो जाएगी, अपनों से मुलाकात हो जाएगी। फिलहाल एक गाने के साथ मेरे साथ रूबरू मुलाकात हो जाएगी। जी हाँ, इस गाने के साथ साथ में एंजॉय करते हैं और इस इवनिंग को और ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। ओनली ऑन रेडियो ऑल इन जियो बिंदास।

अच्छा मीटर में आई रीडिंग से ज्यादा तो ऑटो वाले भैया की बातें याद रह जाती नहीं, जो रास्ते भर वो हमसे बातें करते हैं, गपशप करते हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आपके साथ मिडनाइट लाउंज में। याद है वो सुबह का ऑटो, स्कूल के रास्ते, ऑटो वाले भैया का अभी निकले गया बोलना, और वो एक ही गाना जो रोज बजता था, छैया छैया। वैसे वो राइड लाइफ की बेस्ट राइड थी, बिना एसी के भी फुल कंफर्ट वाली। स्कूल जाते टाइम ऑटो या फिर वो वैन जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ होते थे, वहां पे सफोकेशन नहीं लगती थी, वहां पे एक दोस्तों के साथ अलग एंजॉयमेंट ट्रिप होती थी, छोटी सी मिनी ट्रिप। वैसे वो राइड लाइफ की बेस्ट राइड थी, बिना एसी के भी फुल कंफर्ट वाली। भाई ये तो है कि ऑटो की राइड में भी जितनी खुशी थी ना उस समय, वो आजकल की प्रीमियम कैब्स में भी नहीं मिलती। लेकिन वो खुशी वापस से उन गानों के साथ, अपने उन मोमेंट्स को याद करके, वापस से उस बचपने को जगा कर, मस्ती में पूरा झूम के वापस से उस खुशी को पाया जा सकता है। तो चलिए इस स्माइल के साथ इस खुशी को वापस लाते हैं, इस गाने के साथ अपने अंदर के इस बच्चे को जगाते हैं। ओनली ऑन रेडियो ऑल इन जियो बिंदास।

अच्छा जिंदगी में ना कुछ लोग होते नहीं पर हमेशा महसूस होते हैं, है ना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आपके साथ मिडनाइट लाउंज में। अब इस छोटी सी लाइफ में ना हम ये चीज रियलाइज नहीं करते, जानते सब है कि हर इंसान हमारी लाइफ में एक लिमिटेड टाइम तक है, लेकिन स्टिल हमें लगता है वो तो हमेशा ही हमारे साथ कहा जा रहे हैं और हम उनकी वैल्यू खत्म कर देते हैं ना। वैसे आपकी लाइफ का एक ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में नहीं है लेकिन उसकी याद, उसकी बात, उसकी मुस्कुराहट आज भी साथ है, नेम के साथ भेजिए अपने इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके हाई आरजे आकाश इनबॉक्स में लिखिएगा और क्या कहने चाहेंगे उनके बारे में जल्दी से मुझे बताइए मैसेज करके, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग दूर होकर भी ना हमेशा पास होते हैं जब वो हमारे अल्फाजों में, हमारी बातों में निकल कर आते हैं। तो आज रेडियो पर वो सिर्फ याद नहीं, एक एहसास बन जाएंगे। और फिलहाल इस गाने के साथ जियो बिंदास।

अच्छा, जो जिंदगी से चला गया है ना, आपको क्या लगता है वो सच में चला गया आपकी जिंदगी से? आप उसका जिक्र तो करना चाहते हैं लेकिन किसके साथ करें? क्यों, रेडियो सही नहीं रहेगा क्या? दिल की बात दिल की आवाज के साथ 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज। मैं आरजे आकाश आपके साथ मिडनाइट लाउंज में। महक लिखती है दोहा से, मेरी नानी, उनका हाथ था मेरे सर पे, अब दुआ बन गया है। क्या बात है यार। साहिल फ्रॉम वकरा, कॉलेज का एक फ्रेंड बिना गुड बाय किए चला गया, ओए होए होए, बस कहना था आई मिस यू यार। तो भाई है यार मेरा, क्या बात है यार, ऐसी दोस्ती सलामत रहे यार। रीमा फ्रॉम लुसेल, पापा जो सपने में आज भी मिलते हैं उनसे कहना है आई एम डूइंग ओके पापा, बट स्टिल आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सच में रीमा, कोई पूरी नहीं कर सकता। वैसे भी मिडनाइट लाउंज सिर्फ म्यूजिक नहीं है, यादों की महफिल है। और जनाब, जब जब ये लोग याद आए ना, आंखें नम हो गई और होठ थोड़े से मुस्कुरा गए उनकी झलक को याद करके। तो चलिए एक गाना चला रहा हूँ, शायद आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए, साथ में गुनगुनाइए ताकि लाइफ भी कह दे जियो बिंदा।

अच्छा, फिल्मों के पीछे भी एक प्यार भरी कहानी होती है जनाब, कभी जानने की कोशिश की है या सिर्फ स्क्रीन पे पर्दे पे दिखने वाले प्यार को ही समझ पाए आप? 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आपके साथ मिडनाइट लाउंज में। फिल्म बर्फी के एक सीन में रणबीर कपूर ने एक्चुअली एक डेफ किड से फ्रेंडशिप सीखी थी। डायरेक्टर ने बोला, एक्टिंग मत करना, बस फील करना, और वही इनोसेंस स्क्रीन पे दिखाई भी दिया। इसलिए तो जनाब मैं कहता हूँ कि जब एक्टिंग दिल से होती है ना, तो उसकी आवाज सबको सुनाई देती है तालियां बनकर। तो भाई फिल्म तो सब देखते हैं, पर उसके जज्बात सिर्फ कुछ लोग महसूस कर पाते हैं। तो चलिए एक गाना प्ले करूं, इसे महसूस कीजिए, और महसूस करना स्टार्ट कर दे तो साथ में गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ भी कहे जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
0: ये है मिडनाइट लाउंज. नया लुक नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश. अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग. विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस.
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज.
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो. कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर. TNC अप्लाई.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

अच्छा मैंने क्या सीखा ना कि जिंदगी बड़े गोल्स से नहीं छोटी खुशियों से बनती है। कहते हैं ना संतुष्टि सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, जितना है उतने में खुश है कि नहीं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आपके साथ मिडनाइट लाउंज में। एक नई नई टूथपेस्ट वाली स्माइल, सुबह के गर्म पराठे या रात को बिना रीजन के हंसते रहना, ये छोटी छोटी बातें ही तो असली जिंदगी है जनाब। क्योंकि भाई देखो बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, पर छोटी खुशियां चुनने वाले ही दिल वाले होते हैं। तो आज एक छोटी सी खुशी चुनो और उसमें जी भर के मुस्कुराओ, और मुस्कुराते मुस्कुराते आप भी कह जाओ जियो बिंदास। स्टे ट्यून्ड।

भाई देखो, रात दर्द भी देती है और दवा भी यही देती है। ये रातें बहुत हसीन भी होती हैं और यही रातें बहुत भारी भी होती हैं। जो दर्द में होता है उससे पूछ के देखो सुबह का इंतजार कितना भारी होता है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आपके साथ मिड नाइट लाउंज में। आज की रात कुछ यादों का जादू था, कुछ दिल की बातें थी और आपका साथ था। फिर मिलेंगे नए एहसासों के साथ। मैं हूं आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज, आपके जज्बातों का हमसफर। मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और जॉब लिंक लिख दीजिए। अगर आप अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। रेडियो ऑलिव की वेबसाइट पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग बड़े ब्रांड्स ने अपनी वैकेंसीज पोस्ट की हैं करियर कनेक्ट। तो हाय आरजे आकाश जॉब लिंक लिख दीजिएगा, मैं फटाफट लिंक भेज दूंगा। बाकी नींद आए तो ख्वाब में मिलना और ना आए तो रेडियो पे लौट आना। चलता हूँ, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, जियो बिंदास, गुड नाइट।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: चांदनी

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.